0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई के भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसर

सरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 만든 नमस्कार दोस्तों, मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले।
1: भाई वाह श्रुति जी, आज तो दिल शायराना शायराना है, बड़ी मतलब आपकी तब लग रहा है ऐसे कि बिल्कुल
0: देखो क्या है कि रिमझिम फुहार पड़ रही है तो ये तो मौसम ही है ख्वाहिशों के पैदा होने का
1: जी,
0: तो कोई भी बात करने से पहले श्रोताओं से अपना तारुफ तो करा दें
1: जी।
0: तो नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पुरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। मेरे साथ हैं
1: रश्मि कुकरेती और श्रुति जी, आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी नमस्कार। और आप सभी को बता दें कि आप हमारे साथ हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमसे आप जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर, और डिजिटल परिवार के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं एआईआर न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो जहाँ भी आप हो हम आपके साथ हैं।
1: और श्रुति जी साथ तो हैं लेकिन साथ में सवाल भी हैं, है ना? जिंदगी जब चलती है तो सवाल भी साथ होते हैं।
0: मुझे लग रहा है ख्वाहिशों से संबंधित सवाल ही पूछ रहे हैं।
1: भाई आपने ख्वाहिश की बात शुरू किसने की थी, आप ही ने ना? तो भाई ख्वाहिश से जुड़ा ये सवाल है कि क्या आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है, या कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो आखिरकार पूरी हो गई, यानी कि अपनी इच्छाओं के बारे में हमें बताइए।
0: जी बिल्कुल, ये जज्बात अपनी कहानी हमसे जरूर साझा कीजिए। हमारी ईमेल आईडी हम आपको बताए देते हैं fmgoldga@gmail.com, एक बार फिर नोट करिए fmgoldga@gmail.com।
1: श्रुति जी मेरी एक ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाती तो मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है।
0: तो भीगी भीगी लग ही रही है, पर मेरी ख्वाहिश है कि बारिश हो तो मैं खूब भीगू।
1: अरे वाह,
0: नहीं भीग पाई तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को और बारिश में भिगाते हैं उनको भी। चिराग फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: छुए और भाई हम तो ये कहेंगे कि आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी हो, विचारों में ही पूरी हो, चाहे तो चाहे भावनाओं में पूरी हो।
1: कौन सा मुश्किल है चांद पे जाना, आप तो चांद पे जा ही सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और साथ हमारे जुड़ गए हैं डॉक्टर राजेश राव, वो राम राम कह रहे हैं हमें जी, आपको भी राम राम। और कहते हैं कि भाई जैसे ही बारिश शुरू होती है मेरा मन पकौड़े खाने का करता है। तो ये तो ख्वाहिश बड़ी प्यारी सी ख्वाहिश है,
1: प्यारी सी है। और मुझे लगता है कि 100% लोगों का मन करता होगा बरसात में पकौड़े खाने का।
0: और सविता सैनी भी जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं कि मैं बहुत सालों बाद आज FM सुन रही हूँ और गीत की फरमाइश भी कर रही हैं, तो मौका पड़ेगा तो ये गीत जरूर सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आप कुछ कह रही थी।
1: देखो मैं बात कर रही थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो एक महान कवि होने के साथ साथ एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। उन्होंने कहा था कि हर रेखा में एक भावना छुपी होती है और तस्वीर वही बोलती है जो शब्द नहीं कह पाते। क्या कहते हो रश्मि इस बारे में?
0: श्रुति सच कहूँ तो हम सब अपनी जिंदगी में इतना कुछ महसूस करते हैं पर शब्दों में बयान नहीं कर पाते, और गुरुदेव ने इसी खामोशी को समझाता। जब कलम थक जाती है तो रंग वही भावना बयां कर देते हैं। और श्रुति सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने चित्रकारी उम्र के 60वें साल के आसपास शुरू की थी और तब तक वे साहित्य में नोबेल ले चुके थे, और फिर भी देखिए सीखने में उन्होंने हार नहीं मानी।
1: बिल्कुल, और यही तो कला की खूबसूरती है कि वो हमारी उन भावनाओं को शक्ल दे देती है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। तो अपनी भावनाओं को दबा कर मत रखिए, एक लकीर हो या अपनों से कही दो मीठी बातें, जरूर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करिए, क्योंकि दिल में जो रह जाता है वो बोझ बन जाता है और जो बाहर आता है वो कला बन जाता है।
0: हाँ, और जब वो कला उतरती है कैनवस पर तो वो तस्वीर बन जाती है।
1: और यही तो हम कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशें हमसे साझा करें।

0: देखा कितना खूबसूरत गीत था
1: जी बिल्कुल।
0: देखो रश्मि, जो भावनाएं होती है ना, वो उनको किसी भी तरह से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। रेखाओं में छिपी हो भावनाएं जब, तो तस्वीर खुद ही कहानी सुनाती है। शब्दों से परे जो बात दिल तक पहुंचे, वही सच्ची कला कहलाती है।
1: और क्या बात है, ये भी कविता सी होगी।
0: और गुरुदेव रविंद्रनाथ के सुविचार को हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक मेल पढ़ लें। हमारे पास एक
1: श्रोता की मेल है, और हमेशा की तरह जो पहला खत आया है, पहली मेल आई है, हाँ, वो किन की है वो बताइए।
0: वो मेल आई है नवीन भाटिया जी की, दिल्ली से, मोती नगर से। तो ये लिखते हैं कि एक ख्वाहिश थी जिंदगी की सफल होने की, वो तो पूरी हो गई, और एक ख्वाहिश रह गई है चांद पे जाने की, वो अभी तक नहीं जा पाया।
1: भाई आप चांद

0: देखिए श्रोताओं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें मेल करते हैं और हम उनको पढ़ते भी हैं। तो रश्मि जी, एक और मेल आई है और ये लिखने वाले हैं उग्रसेन यादव, और ये लिख रहे हैं कि दोनों को सप्रेम नमस्कार। देखिए, ख्वाहिश कभी भी किसी की पूरी तो हो नहीं सकती, पर हाँ, इंसान मात्र के लिए जब भी कोई ख्वाहिश हो, छोटी चाहे बड़ी,
1: जी,
0: और बारिश हो जाए तो मान लेना चाहिए कि ख्वाहिश पूरी हो
1: भाई
0: जाएगी।
1: वाह
0: कितना अच्छा कहा है
1: जी,
0: ना। ऐसा हम भी माना करते थे ना, जब कभी बारिश होती थी तो हमें लगता था कि कोई ख्वाहिश पूरी हो
1: जी, और भी कुछ कह रहे हैं।
0: जाएगी। और ये कह रहे हैं कि अगर ख्वाहिश का दायरा देखा जाए तो
1: भाई
0: अनंत
1: अनंत
0: है
1: है भाई
0: ख्वाहिशें।
1: श्रुति जी, ये तो हमारे जो भारतीय दर्शन है, अब यादव जी ने वो कह दिया
0: हाँ,
1: कि भाई
0: बिल्कुल
1: गीता भी तो यही कहती है कि इच्छा रहित कर्म की ओर गीता
0: बने हम।
1: प्रेरित करती है
0: हाँ
1: कि आप अपने कर्म करते रहिए और इच्छा मत रखिए। लेकिन हमारी जो बात थी कि ख्वाहिश की, तो बात तो
0: हाँ
1: ख्वाहिश उन्होंने
0: बिल्कुल
1: बोल भी दी,
0: बिल्कुल
1: लेकिन मेरे मेरे साथ जुड़ गई है सुरभि। वो कह रही है मयूर विहार से कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखना, आज वो पूरी भी हो गई है। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं
0: ये
1: है।
0: तो सच
1: भाई
0: में एक
1: क्या बात
0: बहुत बहुत ही
1: है
0: प्यारी ख्वाहिश और बहुत ही प्यारी खुशी होती है जबकि तमन्नाएं पूरी होती हैं।
1: जी
0: और देखिए, बारिश हो रही है और इससे हमारी जो धरती माँ है वो भी प्रसन्न हो रही है। धरती माँ की ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो धरती हमारी माँ है और माँ से बड़ा कोई देवता नहीं। जो धरती को पूजे वही सच्चा मानव कहलाता है। और बात है त्रिपुरा के एक बेहद खूबसूरत पर्व की, जिसका नाम है खारुची पूजा। ये पर्व 14 देवी देवताओं की पूजा को समर्पित है, जिसे चतुर्दश देवता भी कहा जाता है, और ये पूरे 7 दिनों तक अगरतला में मनाया जाता है। आपने सुना है इस बारे में रश्मि जी?
1: श्रुति जी, बहुत ये दिलचस्प पर्व है। ये खाची शब्द जो है दो त्रिपुरी शब्दों से मिलकर बना है, खार और छी, जिसका अर्थ होता है पाप को धोना। यानी ये पर्व धरती और मन दोनों की शुद्धि के लिए मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो देवताओं को हावड़ा नदी में स्नान कराने से होती है, फिर उन्हें फूलों और सिंदूर से सजाकर मंदिर वापस लाया जाता
0: और
1: है।
0: सबसे खास बात यह है कि ये पर्व जो है सिर्फ आदिवासी समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि त्रिपुरा के हर वर्ग के लोग मिलकर इसे मनाते हैं। आदिवासी हो या गैर आदिवासी, सब एक साथ धरती माता को फल फूल अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यही तो एकता है, असली भारत की पहचान है।
1: जी बिल्कुल। हालांकि इसके पर्व के पीछे एक पुरानी कथा भी जुड़ी आ रही है। कहते हैं कि ये परंपरा माणिक्य राजवंश के समय से चली आ रही है, और जब राजा त्रिपुर के बाद जो है उनकी जो रानी थी हीरावती ने इन 14 देवताओं की पूजा फिर से शुरू कराई, और तब से ये परंपरा चली आ रही है।
0: सच में कितनी गहरी आस्था और इतिहास छुपा है इस एक पर्व में। तो जब भी प्रकृति के हम करीब जाते हैं तो धरती को नमन करना न भूलें, क्योंकि
1: हाँ
0: धरती हमें सब कुछ देती
1: जी,
0: है।
1: और श्रुति जी, ये जो पर्व और त्योहार होते हैं ये दरअसल सांकेतिक जो है हमारा ये है कि हमारी जो संस्कृति है कि अपनी धरती को हमेशा माँ मानकर चलें और उसका आदर सत्कार करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, तब जाकर ये धरती हमारा पोषण कर
0: और
1: पाएगी।
0: प्रकृति से प्रेम करें।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी परख।
1: जी और श्रुति जी, इस बीच एक और मेल हमारे पास आ गई है। आप हैं गौरी शंकर जी नागलोई से और राम राम बोल रहे हैं, हमारा भी राम राम। और कह रहे हैं कि इंसान की इच्छाएं तो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं और मरते दम तक रहती हैं। इच्छाएं पूरी हो जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन सब्र करना चाहिए, जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाई वाह,
0: देखिए बात तो बहुत पते की कही है, क्योंकि सब्र ही तो नहीं होता इंसान से और तमन्नाओं को पूरी करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है इंसान, और कभी कभी उसमें कभी बार झूठ भी बोल देता है इंसान।
1: जो अभी आपने ये जो गीत सुनवाया था ना श्रुति जी, अखियों में रहना गई नींदिया ना आई, लता जी कह रही थी कुछ ऐसा ही जो आपका जो
0: बिल्कुल। देखो रश्मि, क्या कहते हैं कि झूठ बड़ा होकर कभी पैदा नहीं होता, है ना। उसकी शुरुआत बहुत ही मासूम होती है, कभी डांट से बचने के लिए, कभी किसी से नाराजगी से बचने के लिए, तो कभी अपनी गलती छुपाने के लिए। उस पर लगता है कि एक छोटा सा झूठ क्या बिगाड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे वही झूठ एक बड़ी आदत बन जाता है और फिर सच बोलने से ज्यादा झूठ बोलना आसान लगता है।
1: और यहीं से मुश्किल शुरू होती है श्रुति, एक झूठ को बचाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और फिर तीसरा, फिर इंसान दूसरों से कम खुद से ज्यादा उलझने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि झूठ किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव यानी विश्वास को बिल्कुल धीरे धीरे खोखला कर देता है, और एक बार भरोसा अगर टूट जाता है ना श्रुति, तो उसे दोबारा बनने में बहुत समय लगता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर झूठ किसी का दिल बचाने के लिए बोला जाए तब। मेरा मानना है कि पहले मन से पूछना चाहिए कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या इसी से किसी का भला हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और तभी झूठ बोलना चाहिए।
1: हम तो कहेंगे झूठ ना ही बोले तो अच्छा है। आज के समय में तो सच छिपाना पहले से वैसे ज्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए झूठ बोलने से पहले ये सोचिए कि अगर सच सामने आ गया तो क्या मैं अपने रिश्ते में विश्वास और आत्मसम्मान बचा पाऊंगी। और जवाब अक्सर पाएंगे कि आप नहीं ही होगा, तो फिर भाई आप झूठ की हद तक पहुंच चुके, मत कीजिए।
0: तो बिल्कुल आज एक संकल्प भी लेना चाहिए हमें कि अगर गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकारने का साहस रख

0: और सच कभी कभी मुश्किल जरूर लगता है लेकिन मन को सुकून देता है।
1: जी
0: झूठ ना ही बोले और क्यों ना हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक
1: जी
0: बहुत प्यारा सा गीत जो सबको बहुत पसंद था वो सुने।
1: जी

0: क्योंकि पनामा लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई खत्ते तक रसाई का एक अहम दरवाजा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बाहरी उमूर, सेहत, ज़राअत, तालीम और डिजिटल तआवुन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाए जाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बिन अक्वामी फोरम पर बाहमी तआवुन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमूज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने तंबीह की है। इनमें से दो अमरीकी फौजी उर्दू में जबकि एक इराक में मारा गया था। इससे पहले ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसकी बाहरी फोर्सेज ने ईरान के सूबों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिजाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी असासों और ठिकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए जाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजराला को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूस सीएलसी को तलब किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज की मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं सजाद हुसैन की मौसीकी सजे हुए, जिनका आज यौम वफात है। सजाद हुसैन 15 जून 1917 को सीतामऊ मध्य प्रदेश में पैदा हुए और तकरीबन उन्होंने अपनी मौसीकी से, यानी कि अगर उनको उनके बारे में बात की जाए तो मैंडोलियन बजाया करते थे वो। 22,000 गानों में उन्होंने वो मैंडोलियन बजाया और एक ग्रेट आर्टिस्ट थे वो। इस तरह से कहा जाए तो उन्होंने अरबिक, हिंदी और सूफी म्यूजिक को एक साथ हम आहंग किया। कुछ नगमे ऐसे हैं कि वो उनके लिए उनकी एक यादगार बन गई। अगर उनके नगमों की बात की जाए तो यकीनन उनके नगमे आज भी हमारे दिलों में तरोताज़ा हैं और उनकी मौसीकी से नगमे एक खूबसूरत रंग लिए हुए हमारी याददाश्तों में महफूज हैं।

सूर्य की आवाज में आप सुन रहे थे 1857 फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था सज्जाद हुसैन ने। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में सामईन, हम आपको सुनवा रहे हैं सज्जाद हुसैन की मौसीकी सजे कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की अगली पेशकश रूप लेखा फिल्म का नगमा, सूर्या और सुरेंद्र की आवाजों में।

और सामने इसके प्रोग्राम की आखिरी पेशकश रुस्तम सहरा फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी मन्ना डे की आवाजों में। इस नगमे ने भी सज्जाद हुसैन की शोहरत में चार चांद लगा दिए थे।

फिल्मी दुनिया को खूबसूरत मौसीकी देने वाला है मौसीकार। 21 जुलाई 1995 को 78 साल की उम्र में हमसे रुखसत हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी मौसीकी सजी वो फिल्में कि हम जब भी उन्हें सुनते हैं उनकी मौसीकी हमारे जहनों को ताजगी बख्शती है। तो सामने था एक प्रोग्राम खिराज अकीदत का मारूफ मौसीकार सज्जाद हुसैन के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है सज्जाद हुसैन की शख्सियत और खिदमत के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज की तहरीर का द फीचर, फिर तुम्हारी कहानी याद आई ऐ सनम का दूसरा और आखिरी हिस्सा।

1952 में जब फिल्म संदिल आई तो इस फिल्म की मौसीकी ने उस वक्त के मौसीकारों को भी चौंका दिया था। अगर हम क्लासिकी एतबार से देखें तो भी इस फिल्म की मौसीकी उस दौर की सबसे ज्यादा मारूफ और आला पाए की मौसीकी करार दी जा सकती है। इस फिल्म में 8 नगमे थे और सब के सब आला तख्लीक का एक अच्छा नमूना थे। धरती से दूर, गोरे बादलों के हार, आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज में एक ऐसा मलकूती नगमा है जो सुनने वाले को एक और ही जहान में ले जाता है।

नगमे में पियानो और दीगर साजों के अलावा बांसुरी का आवाजों के साथ मिलन हमारे जहन पर एक पुरअसरार और जादुई असर कायम करता है, जो गाना खत्म होने के बाद भी कायम रहता है।

दिल में समा गए सनम, फूल खिले चमन चमन। तलत महमूद और लता की आवाज में एक निहायत ही दिलकश गाना है। ये दो गाना अपने सुरताल, लफ्जों की अदायगी और मानवीयत के लिए एक मिसाली गाना करार दिया जा सकता है।

कली, हंसने लगी कली।

अमीर नकवी का लिखा एक गाना सज्जाद हुसैन ने फिल्म रुखसाना के लिए कंपोज किया था। बलाइर सादा से गाने की पुरकारी और असर आफरीनी के बारे में वही जानते हैं जो इस गाने को गाने की कोशिश कर चुके हों।

फिल्म रोसाना में किशोर कुमार और आशा भोसले का एक दो गाना था, भुला दो जिंदगी के गम। ये शाहकार गाना आज हमें सज्जाद हुसैन के मखसूस अंदाज की याद दिलाता है। सज्जाद हुसैन अपनी मौसीकी में जिन जिन अनासिर और अवामिल का इस्तेमाल करते थे, ये गाना उन सारी चीजों से हमें रूशनास कराता है।

फिल्मी दुनिया ने गुलाम मोहम्मद और सज्जाद हुसैन जैसे जीनियस मौसीकारों के साथ जो ज्यादतियां और जुल्म किए उसका एहसास तब होता है जब हमें पता चलता है कि फिल्म रुखसाना में आला मियार की धुनें तख्लीक करने के बाद कई सालों तक सज्जाद हुसैन के पास कोई फिल्म न थी। ये नुकसान सज्जाद हुसैन का नुकसान नहीं था, दरअसल ये नुकसान फिल्मी दुनिया का था, बल्कि इससे भी बढ़कर ये नुकसान असल में हिंदुस्तानी मौसीकी का था कि सज्जाद हुसैन ने 34 साल के अपने कैरियर में सिर्फ और सिर्फ 14 फिल्मों में मौसीकी दी। फिल्म रुखसाना के 8 या 9 साल के बाद एक तारीखी फिल्म रुस्तम सोहराब आई, जिसके तवस्सुत से हमको एक बार फिर सज्जाद हुसैन की धुनें सुनने को मिल सकी।

ये गाना एक ऐसी अजब दास्तां हो गई है। सुरैया की खूबसूरत आवाज के साथ साथ इस गाने में हमें सासानी और अरबी बल्कि वस्त एशियाई मौसीकी का हसीन और जमील अक्स और इम्तिजाज सुनने को मिलता है, जो हर एतबार से लाजवाब है।

खुल जाएगा। सज्जाद हुसैन फौरन उस धुन को आसान लेकिन दिलकश और दिलनवाज ऐसी धुन में बदल देता था जिसे कोई भी गा सकता था। नौशाद साहब के मुताबिक अगर कोई फिल्मसाज सज्जाद हुसैन की किसी धुन में मामूली सी भी तजवीज पेश करता तो सज्जाद हुसैन भड़क उठते और कहते, तुम्हें मौसीकी का क्या पता है। इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया और अपने ही बनाए ताजमहल में कैद होकर रह गए। सज्जाद हुसैन ने एक मौके पर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी की पेशकश भी ठुकरा दी थी। डायरेक्टर के आसिफ से एक बार बहस हो जाने की वजह से फिल्म मुगले आजम जैसी फिल्म की मौसीकी का नादिर मौका भी उन्होंने

इस बात में खुशी महसूस करती थी कि वो सज्जाद हुसैन की धुनों से इंसाफ कर पाती थी और उसे वो अपने लिए एजाज समझती थी। फिल्म खेल का ये गाना गीता के साथ सज्जाद हुसैन के आखिरी गानों में।

0: अभी हमने आपको बताया कि ये गाना सज्जाद हुसैन के उन आखिरी गानों में है जो उन्होंने गीता दत्त के साथ कंपोज किए, क्योंकि उसके बाद के दौर में एक जमाना वो भी आया था जब सज्जाद हुसैन अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगे थे कि वो गानों की धुन तभी बनाएंगे जब आवाज लता मंगेशकर की होगी। उनका कहना था कि लता के अलावा उनके गाने कोई और नहीं गा सकता है।
1: मोहम्मद रफी का गाना इस पार दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं, एक ऐसा नादिर और नायाब गाना है जो आज शायद ही किसी को याद होगा।

ना कीजे दिल ले ले।

फिल्म संदिल का भजन दर्शन प्यासी आए दासी गीता दत्त की आवाज में एक नादिर भजन है जिसका एक अलग अंदाज है जो मन को मोह लेता है।

इंडिया की आवाज में गमिया आशियाना अपने अंदाज का एक अनोखा गाना है और जिसकी कलाकारी और सदाकारी और लयकारी अपनी मिसाल आप हैं।

0: हालांकि सज्जाद हुसैन ने नूरजहां के साथ एक इकलौती फिल्म करने के बाद दोबारा कभी काम नहीं किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि नूरजहां अपनी पूरी जिंदगी सज्जाद हुसैन की फनकाराना मौसीकी को भुला नहीं पाई थी। आज से तकरीबन 30 साल पहले एक बार लंदन के एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पसंदीदा मौसीकारों के बारे में पूछा गया था, तो वो 2-3 मशहूर नामों के बाद नूरजहां ने मौसीकार सज्जाद हुसैन का नाम बहुत अदब व एहतराम से लिया था। उन्होंने कहा था,
1: मौसीकार सज्जाद हुसैन इंतहाई जहीन मौसीकार हैं। नूरजहां के ख्याल में सज्जाद हुसैन अपने आप में मगन रहने के सबब कारोबारी तौर पर कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी बनाई हुई धुनें लाजवाल हैं और रहेंगी।
0: इंटरव्यू करने वाले साहब ने जब नूरजहां से कहा कि सज्जाद हुसैन साहब के बारे में सुना है कि वो बड़े खुसर थे और किसी को खातिर में न लाते थे, तो कहा जाता है कि ये बात सुनकर नूरजहां भड़क उठी। फिर कदर तहमुल से उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा था,
1: बात गुरूर की या तकब्बुर की नहीं, बल्कि ये इज्जत नफ्स का मसला है। अगर हमें खुद अपनी इज्जत का ख्याल ना हो तो दूसरे हमारी क्या इज्जत करेंगे। सज्जाद हुसैन साहब को अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रहता था और वो खुद अपनी इज्जत करना जानते थे।
2: फिर तुम्हारी याद

21 जुलाई सन 1995 को मौसीकार सज्जाद हुसैन ने मुंबई के माहिम नामी मकाम पर दारे फानी को खैरबाद कहा और इस जहाने रंगबू से चले गए। इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे ने बताया था कि अपने आखिरी अयाम में मेरे वालिद को किसी बात का कोई अफसोस नहीं था और न ही किसी किस्म का पछतावा। दुनिया से सज्जाद हुसैन ने बस इतनी तवक्को की थी कि उनकी अजमत का इतराफ किया जाए। मरहूम सज्जाद हुसैन को इस बात का इत्मीनान था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर अपने ढंग से गुजारी।

0: फिर तुम्हारी कहानी याद आई ए सनम। इस फिल्म में सामिन भी आप सुन रहे थे, इस फीचर पर अभी आप सुन रहे थे सज्जाद हुसैन की शख्सियत और खिदमात के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज की तहरीर करदा फीचर का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा। सदाकार थी दानिश इकबाल, अली मुतशिम रजा, उमर सैफ और शबनम एहसान। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। आज उनका यौम पैदाइश है।
1: नजर वो जो दुश्मन

आया सावन झूम के। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमानिगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। और आप सुनिए अनवर की आवाज में अर्पण फिल्म का नगमा। एक मरतब फिर नगमानिगार आनंद बख्शी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश बालिका वधू फिल्म का नगमा अमित कुमार और आर डी बर्मन की आवाजों में। नगमा निगारा नमसी मौसीकार आर डी बर्मन।

0: और सामिन जब सुनी एस जानकी, मोहम्मद अजीज और साथियों को फिल्म है आखिरी रास्ता।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready?

आपकी कसम फिल्म का नाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, मौसीकार थे आर डी बर्मन। और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आमने सामने, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाए कल्याण जी आनंद जी ने।

आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों को, फिल्म थी अनुरोध, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने सुनिए अमर प्रेम फिल्म का नगमा एस डी बर्मन की आवाज में, मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

और सामिन, आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में पुष्पांजलि फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सर्वनी सर में के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम खिराज अकीदत था मारूफ नगमा निगार आनंद बख्शी के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की हुकूमत के आजम को दोहराया है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। और महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जीएमसी बाला योगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नमानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तिहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतालका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलविस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के आजम को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलविस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलजमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकालने की गरज से तलाशी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 11 लाशें निकाली है। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक जेर तामीर टनल के मुनादिम होने के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। मेरुकिन के कुंभों से ताजियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने मेलुकिन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी

वजीर दाखिला अमित शाह ने सिक्किम के वजीर आला बेरेन सिंह तमांग से बातचीत की है और नामची जिले में जेर तामीर एक सुरंग में जमीनी तोड़े खिसकने के हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर दाखिला ने बचाव कोशिशों और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। भारत ने आज रूसी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमीर लादानोव को तलब किया है। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लीप पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया है। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें जाये हो गई थी। वजारत खारजा ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते और इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों से बैन अवी बहरी तजारत की हिफाजत सलामती और इस्तेकाम को नुकसान पहुंचता है। वजारत ने बताया कि जनाब लादानोफ ने दरखास्त की गई कि वो भारत की इस गहरी तशवीश से अपने हुक्म को आगाह कर दें कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जाना और उसके नतीजे में बेकसूर की जानें जाय हो जाना नाकाबिल कबूल है और इसे गुरेज किया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी दिफा और आवाम से आवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामी कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मैक्सिम पेरिवोट और वहां के आवाम को उनके कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़म है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि कनाडा की जानिब से अमरीकी सामान के मामले में तफरीक बरतने के जवाब में ट्रंप इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। बयान में कहा गया कि मजकूर अकदाम का मकसद एल्कोहल और डेयरी समेत अहम अमरीकी बरामदात के लिए बराबर का मौका दस्तियाब कराना है। उधर कनाडा ने कहा है कि अमरीका के ये नए महसूलात 3 मुल्कों कनाडा अमरीका और मैक्सिको के माबेन आजाद तजारत के समझौते के बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने आज भारत की सरकर्दा दवा और वैक्सीन साज कंपनियों को मुल्क में ही तैयार की गई 3 बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस जारी किया। ये लाइसेंस देरीना कैंसर और मुतादी बीमारी का के इलाज से मुतालिक है। बेंगलुरु जोन का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED 8 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। यह कार्रवाई कौमी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से दायर की गई FIR की बुनियाद पर दर्ज की गई है। इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के सिलसिले में की जा रही है। ED के मुताबिक यह मामला इराक और शाम की दाइश ISIS के लिए लोगों की भर्ती से मुतल्लिक है, जिसमें बेंगलुरु का एकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और दीगर अफराद मुलविस हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से फिर मिट्टी के तोड़े गिरे हैं, जिसके सबब 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मोटरगाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। उधमपुर और रामबन जिलों में शदीद बारिश की वजह से कौमी शाहराह के पहाड़ी रास्ते में कई मकामात पर मिट्टी के तोड़े और चट्टानों के टुकड़े गिरे हैं। इस दौरान राजौरी जिले के नगरोटा सलधार इलाके में भी मिट्टी के तोड़े गिरने की खबरें मिली हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में शदीद से बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश से मुतल्लिक रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतल्लिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट

0: पत्र लीक मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की हुकूमत के आजम को दोहराया है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया है। अमरीकी सदर ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडिया में भी 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: Machana, des charlottes en jazz pungen, mais ça pungatez, mais ça que de peu charte, jamais bi rarix son se charte, plus ta chan, ils sont se, que c'est être pour sailusna, des sa pouche charlotte en chat. Casta jusqu'à ce rien de bâtiment à tes fusari, comme c'est comme zen de jour, son zefua, sa que de bodin, atina, son sefuidna, ya, chokske seriabna, comme c'est comme char layer of clothing, frikazarin, comme c'est comme bunchan zen du kieres, padla padla scon, lekin layer sans con, char comme c'est comme char guncha, at least. Donne yen, mais ça pudi, absorbable diaper use bacha. चेस बनाना जरा मिसाल बताऊं से जिसके नाते से नियल्सा स्टोस से लेकिन ग्रामोरा शिखर दुगना दूसरे नाते हीट प्रोग्राम जो है थेन भी कोशिश बचें जो दूसरों हाइपोथर्मिया का निस्पान है चेंडू जो तेरे आम तौर पर नाते आम तो फ्लू सागा गाल नाते इस कॉमन फ्लूज है चीन रहा वायरल जैसे आम छंपे किन जो फ्लू एनु ज्यादातर को फ्लू सागा दे स्नप भी ऑनचीन स्नैचू ऑनचीन ब्रिट पा ऑनचीन खोस परेश है चीन बुखार है चीन
1: आम छज्जी होना बाकी
0: सब कुछ कॉमन वायरल फ्लू है चीन चाहे दी छंपा ले मिसाल एहतियाती तरबीर इन जो बार बार फ्लू सागा लखपत फोर क्वेश्चन से ना और फ्रीज नप पे बिल्कुल ठीक बस फीस जा पोशन जरा दी वायरस पे जो है दी फ्लू दी वायरस पे ज्यादा रंगाती दी म्यूकस होने ना स्नेप होने लुशन जरा चाहे स्नेप पंगाते जो खान पे छंपा उत खान पे सही बस खूनरिक फिनरिक इर देर बियर में इम्कान लुशन मिन्स और खुरी छंपा हो दस्ती फरक चेशन जरा और कमरा यन में सब वारम जाचे ह्यूमिड जाचे कम ना कम से कम देगा ते हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल में दोनों का कम से कम करीर या छुरी इतनी छुरी जासपा दोस्त बोली भाप भी मना जो है अति दी नमी छाते लुसपा दोस्त बस काफी अति फुलना फायदा है चीन जो जो यन में सब ठीक बस छूत हूं जफरा खर्ची वर्ची हुशार बसना चा और दो बसंखे में लुसना जो है हॉस्पिटल स्तंचा
2: Darentes Ardelusis Collatis Wagen in a pin medium wave don a pemica duakashwani kargilin, waspatus sotogana mertsum chusuasun sukasta, or Yahuri Protuget Nyan Maset.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: प्रिंसिपल पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदया विद्यालय खुम्बतंग कारगिल के मौसला इलाके के मुताबिक पांचवी जमात में पढ़ रहे तालिब इल्म, जिनकी तारीख पैदाइश 1 मई 2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच तक हो, उनके लिए छठी जमात में दाखिला लेने के लिए JNV सिलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वालिदैन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए navodaya.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल पीएम श्री स्कूल JNV खुम्बतंग कारगिल के ऑफिस से राबिता कायम करें।
2: फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारती मीमांग सुन्न यम्बो ग्रक्चा इन खुरी सिंह स्पेरान योंग मी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बाती स्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पोग यंबो नशिर बचाइन दो मेन मा दूरदर्शनी यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईदु जगपजत योंग मी अदिति जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात।

0: Disable chaba se pela phru nga tes phan chunar gel chin. Disability is not an option zir chun je chang ko de nik men. Pa pene yong chin yong cha lekin ko faydik masong phri phila. Naksa phri mik kam zir honuk. Yang de mobile waje screen time mang mo song se. Deri apna disable gyur honuk. Khachi ga atame la parwai waje se shenuk. Ab dene phila de chok slang ati lain kesh yong zhuya man lo. Bome gyo tsuk ati khoi tsuk. Speech and hearing disability zir chun je. Phru mute zir chun. Mute zir ban na spela me tang cha na gome go cha. Kasa. Deri apona kho nga chas. Khoi mingun sak na zir. Dekan aachas kes kherer gyapona doctor lekhis kargilla ngati doctor imtiaz lekhis pin doctor imtiaz ENT injua kargilla khoi ke khere regular intervention bas nga chaltas khoi hearing tesho ma sar dung ati kargilla yot met pana te sinar la den refer bas tang ma da do khoi dikha early intervention sam se bar go shayad na ga tu gwang ma bas e khachula kal jua khachula kare khoi MRI hearing test khoi CT scan gwang ma bas bas ri apna aachas district administration rakesh sari dona doctor sarwar sheza khung iske bilkul effort wajah se dugang ma kamyab song sin phung aachas fund raise bas har jagah na fund raise bas doctor sarwar na dc saris ne aachas phru with ngati nodal officer sik chu se appoint bas se office kuriana daily calls yo odya sanklap foundation chu odya phri operation bas aachas 2 baad operation ming po cochlear implant ma costly hun sin am miadu bear ban jamin jo bardash ba lagbhag 11 se leke 20 lakh tak kharcha ma jo dekana ana jana dukchas dilli dukchas khorang mahangai ne upar se ngati dir khare ke bpl indian namang mo odena kes mang mo no da mana dilli angachas operation ba se kam as kam khub jo jese ki zer bal sap cha khuidna sap ta chin sense do mindu ga khner ya basu se son sap putan jin deka alag de alag cost ma do government is bear basin dekana koi parents yang yamu yut pin father walid sab gorang kho sinar la cham se yut na gangma government of india ngati ut administration is gangma effort basi gangma fin sin juya kargil lo se kharcha barcha gangma tang se daksa kargil lote daksa first class sun se je bomo thi yut de chosla cham se ngati disabled yut na khas kar speech disability na hearing disability yut na ga tu atna cochlear implant de ma bilkul possible in age gangme phelen man lo 15 sal langa ta ba engine cochlear implant 20 साल हाँ बाय इंचिन लेकिन फ्यू इतना का तो 5 साल का नहीं योग इतना का तो मतलब खर्चा उनका में उचिन बाल समो इंजॉय ना तो निम्मा चाना आता हूँ पत्ते राशि गलत रह सजिन अर्ली इंटरवेंशन मज़रूरी इन सरिया देना हो अच्छा उदो बसे फ्यू लगभग दक्षा ठीक सोंग सुध सरिया
1: बख्श सलीम साहब जो माना अर्द मोमो जो आती मेमान स्कूल ला डिसोक्सा डिसेबिलिटी को ने लेकिन हम फसल बसे मोचस पो छाना दक्षा आती याने डिस्ट्रिक्ट करगिल आनुक यंत्र जो सर्वे बसे जो छाना आती करगिल आनुक यारस मोजो की आती डिसेबिलिटी टाइप पुखरंग यानी निशो सक्षी गोज जो देन उन गा का डिसेबिलिटी उन आती करगिल आनुक ख्यार रे यंत्र थो मशन नो और दु चीज तो लेगो सोसे जो दिस को लचका
0: आ ये जो ख्यार एक नजर ना का तो मैक्सिमम यूं जो आती इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन चो जिन सारे आती और देन आती मेंटल रिटार्डेशन ख्यार एक दु यों चिन आती बाय बर्थ उन लोग मैक्सिमम फ्रेंग मतलब स्किल लुक्स ला देना जर्मो यों से उन लोग दो आता जीनी वजह से उन चिन जो है मतलब इनहेरिट बस इन फादर ही करना दोस फादर ही करना दो आता चंग बाइन जमीन लेकिन मैक्सिमम पो आता चेंज बाइन जिन जैसे कि फ्रो मान लो लो विजन पो मैक्सिमम पो स्क्रीन टाइम वजह से छेनो ऑटिज्म पो मोबाइल खुरबी वजह से छेनो ओदुन गंगमा आता जितना हो सके फ्रो सोशलाइज बचा चुग मुना फोन दानो जन मजाना प्रो फोन दानो देखना फ्रो देना कैरेक्टर था सोसे दूर हो जाए मैक्सिमम अच्छा सर्वे बस रिया पुना अच्छा क्या रिक देना तुम कि गान ना मतलब लापरवाही रजा शुद्ध नगर ने ऑटिज्म मामो छेन जो है मेन पुदु फ्रो जन जमीन उपजो यंग कार्टून जी पुतानो फ्रो मुई न उपजो यंग फोन जी तानो अमा खोरा लाशाना फोन जी तांसे छेनो ना चा छाजना फोन ता छेनो मजली शलेब ना फ्रो मुई न जर यंग मोबाइल लखपा कलिनो देने वजह से अतना काफी परेशानी होनु जो है दिमाग क्या रिक एमआर होनु मेंटल रिटार्डेशन मेंटल इलनेस क्या रिक छेनो सारे दोना लापरवाही सो अब गवर्नमेंट इस आतेस कुछ स्कीम का तुन जेतना जरा सरिया गयनु को अच्छा सर्वे बस यहाँ तक कि टीएसजी अबास मेन पहुंचा फोकस पहला टीएसजी जैसे कि पॉपुलेटेड एरिया से ना टीएसजी अबास जो है देन अच्छा अराउंड 63% with disabilities identify basu sarya kho acha skill tangjin manlo chichik locomotor khe manlo khadan hasta lakpa den accident je songse lakpa me tangpa lakpa me yopa lakpa kho skill bayan che kho acha skill provide bachin sarya jese ki manlo kho tailoring basin yodna electrician basin yodna computer ka ban duksi yodna dongen chin jo agar padha likha so disabled yodna ka to office na rabita bacha hali me acha phuchi ga hdfc bingan nokri tangsin sarya nokri tang manjin ata kon fil alak seat reserved onjin dong ate অফিস ডিপার্টমেন্ট নমু কোন কোঅর্ডিনেট সেজিন দের ইপনা আতিস কো নোকরি আন দাসিন আতি ডিসি সাহেব কো না পাতে দরা প্রেজেন্সি কান তাসিন আতিস এইচডিএফসি বিং আ ফার্স্ট ক্লাস নোকরি ম্যান উইথ অ্যারাউন্ড 40-50,000 স্যালারি উঞ্জিন স্যার মিনিমাম 20,000 তা তা চুস্তাং ম্যান জিন মাসারে দিয়া কোন ডিপার্টমেন্ট রাবিতা বাজে চিছানা দেয়া চুসলা আজাস এলএম কো জেন চুঞ্জিন স্যার দাকসা উঞ্জিন এক মহিনা ডেড

0: ना एल एम को जिंची ओदे आतेस एस एस टी डिवाइस प्रोवाइड बचिन खो जैसे कि मान लो चीची का स्ने मशीन को शो स्ने मशीन ता छिन व्हील चेयर को शो व्हील चेयर ता छिन अपो सा सीनियर सिटीजन ला पुस्मा जर्मो मत फ्याक बांग ता रजा शि गुलांग जब मैन नगा तो कुर्सी गों छिन दे कुर्सी ता छिन कमोट का दुपा मैन नगा तो कमोट ता छिन लंग्स पी कमोट अब खोगा मान लो चीची डिजेबल हो मेंटली खुद ठीक हो आई साइट आन ठीक हो नी गां ठीक है तो खोगा जस ट्राइसाइकल जिन ची स्कूटी सो शों छिन ओदों प्रोवाइड बात सरे ताकि खो करंग रोजमर्रा हटी जी का सों से लोग समय ओदुन गांग मा यो सरे लेकिन मसला दू यो के ना डिपार्टमेंट ला यों मरो छिन डिपार्टमेंट ला यों से राबिता बना का तो आप मतलब स्कीम काफी हो दक्षा आती यूनिक डिजेबिलिटी कार्ड पुचोस बजो अध्ययन आता 1250 रुपए आता पिने छिन डिजेबिलिटी पेंशन स्कीम जिन ची पीसीपी अंडर सॉरी जो पर्सन विद डिजेबिलिटी जा फिजिकली चैलेंज पर्सन जे रहता फोंगा 1250 आता पिने तामा इंजिन यंग आता मान लो ऑर्फन जो अनाथ जे आते जे यतीम दी फ्री तखन वखन मामित ओदोल लंग आता दक्षा 4000 महीने जो इंजिन जो है फ्रिजी चिकवा या फिर निज लंग अगर आता सीलिंग जो जो ची मतलब सीलिंग चीज ना तो दिचिक 20 नफर ला फंड सब 20 नफर ला मैंने तंग मैं ओदे सब आते सिंगल फ्रूची चुना या डबल फ्रू चुना यहाँ चिन सर अब देना आता फ्रू 18 साल छचाओ 18 साल छचाओ 3 साल फिल आता खुआ 4000 आता पेने तंग मैं चिन 2000 जो स्पॉन्सरशिप स्कीम कैसे 2000-4000 खुआ हर मंथ जो 12 जो की 48 यानी 1 साल 48000 रुपए का पेने जिन सर दक्षा दक्षा गुंदे चौक यंग स्कीम चो सर दे अंडर आता बोमो चल चिन 8 क्लासिक है ना गिन लसु योदना गरीब छिक यतीम ची योदना दो आता साली 50000 रुपए तक मैं चिन 4 साल फिले सर वजह स्कीम पॉइंट अगर सुंग खंडीस प्रिन पो प्रोते योदना का तो ऑफिस ला रबिता बचा स्कीम गाची ला योद इन तंग छिमिया ना स्कीम योद बोमो ना स्कीम योद विडो पेंशन ओचिन गाती ला गाती नतपे ला योद फिजिकली चैलेंज पर्सन जिन ची पीसीपी अंडर गाचिला सिक्किम ब्रॉड तरीका इंतजाम जरना एनएसएपी ना एट्रिपलेस जिन चोत नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिन ची सरिया चीचिक पो सेंट्रल स्कीम इन चीक पो स्टेट स्कीम इन IEEE फॉर्म आती स्टेट स्कीम इन सर एनएसएपी आती है सेंट्रल स्कीम अब दे अंडर आता इसके कवर बैन चीन दे आता डायवोर्स आती बोमो योजना आती नतपा योजना 60 साल का गेला छिमीमी योजना 55 साल का आती अने योजना लेकिन शरद पुदू इन खो गरीब उम्र बीपीएल सोशल स्कीम का बीपीएल हो सिर्फ रेवा छोड़कर जो है रेवा जिन स्कीम चो स्कॉलरशिप दो मेरिट बेस है बाकी सम स्कीम बीपीएल राशन कार्ड उमा मैंडेटरी जो है मान लो यंग आई का हेरिंग एड चीख हम स्ने मशीन चीख हेरिंग आ स्नप से पहला सचिन राम बीपीएल इन जमीन चुआ क्योंकि आती स्कीम पर हकदार में था पर वशिन दे फिला सर यंग डिपार्टमेंट की तरफ से मेमांग संभाल चेस काफी कवर हम बस सर नंग ना एन एर तना का तो स्ने मशीन यू सोचिन व्हील चेयर लेप से ओंचिन बेरगा लेप से ओंचिन स्कॉलरशिप तो मान मिलन खानी फ्रू होंगे मैंने कहते गरीब मैंने हर जगह स्कॉलरशिप अप टू हायर एजुकेशन सब में आता स्कॉलरशिप तक मैं जिन इंता देना मीमांग संभाला युवा इनकी डिपार्टमेंट ने रबिता बचा ची चीर गोशेद ने कहा तुम अच्छा दिन सक पे प्रोवाइड भी नहीं इंता ताइन आइंदा के लिए ता न्यूत इंता पते अच्छा गहूँ गहूँ लेप पत नंग नंग लेप सिंह अच्छा सो ऑपरेशन बार गोशेद ना दो ना करेक्टिव सर्जरीज यों चिन सर करेक्टिव सर्जरीज बना मान लो इरा युत इरा ता गरीब इन चंग हॉस्पिटल अच्छा है चमेत खचुल लसों से ऑपरेशन बार इन मामूली गांव फ्री दो आता पेने मेत पाना ओदू आता अर्ली इंटरवेंशन चौक सो से फ्रो हल्का पलास्तर चिताना कांगमा ठीक से छिन दे करेक्टिव सर्जरीज गांगमा डिपार्टमेंट इज फैसिलिटेड बर्ड सर नक्सा अतिला जबरदस्त डीसी और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर काफी ईमानदार और बिल्कुल डेडिकेटेड ऑफिसर इन कभी भी आके मतलब इंतंग थुप इंजिन हमेशा इंतंग नाम यों नगा तो ऑलवेज वेलकम आज तक सपोर्ट गाचस बेन ऑन स्पिन आइंदा के लंबो इंशाल्लाह
1: बख्शीश तलीम जावेद साहब थाना स्परा चिचिक नता दुतो गा बिंग सो नक पजु की मिसाल दक्सा गति बोमो बसोन लजु खासकर इराजर ना चिकचिगा मिसाल खवा डिवोर्स सो सोजु थाना खवा या खवा डिवोर्सी डिवोर्सी
0: नाम से ना गवर्नमेंट स्कीम एक महीने अवेलेबल देखो डाइवर्स का तो खुद अगर मान लो डाइवर्स हूँ सो सर अपना यंग बख्तून बेचर ना का तो खो आती तरफ से लदाख मैरिज असिस्टेंट स्कीम यंग बख्तून लद्दाख मैरिज असिस्टेंट स्कीम की तरफ से खो आते 50000 बुमो अगर खो डिजेबल 1 लाख आता पेने तमाम सरिया।

0: छना वन टाइम इन सर फैसिलिटीज पो पहला खुश एविल बस ने एंजेम ने यंग दक्षा अगर खुश डाइवर्स से को यंग दक्षर से बक्सन जे जिन सर दो छना का तो आता मी डेथ सर्टिफिकेट पो आधार कार्ड पो बीपीएल राशन कार्ड उन दोन गंगमा छों से को अति डिपार्टमेंट ला रुजू बना का तो खा पेनिस ऑफ चिन सर हेल्प मांग में
1: बख्शीज सलीम साहब छाना यंग स्परेटिज गाता दुतुला बिसे ओनक बजू की दक्षा अति खुसूसन निमांस कुन ला यरा जरना जी सोशल मीडिया ती मोबाइल इस्तेमाल ना फ्रूनी का असर मन मांग वेनु जजू या आर्टिज्म चुक्सोन गा बोजन चुक्सोन अति जी मोबाइल स्टोरी का यों सेन जोन जू छाना अति माने निमांस कुन इंशाल्लाह सुनसे फ्रून ला ना को मोबाइल इस्तेमाल ना बंद बजा पयान लेकिन फ्रू तक्सी को या एजिट चुक्सोन से या को दा चार का तो छाना दक्षा तमाम में लस कुन गा मा को मोबाइल कने एक तरफ से खा दू फैसिलिटी सोचना चाहिए खुसूसन दक्षा अति स्टूडेंट छाना दू ने जरूरत की गाचास मोबाइल कना से लेने जरूरत छाना दी जवान टे भी जी प्रभाज भी स्कूल ला यारा जना जी मोबाइल कना खो स्टडी भी नहीं होता जो दू ने चांग असर बच्चे ने मैंने दी स्कूल
0: बिल्कुल जो दक्षा अति टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आता निज ऊंच जो है दो तरीके का आता हस्ता इंजिन या खो अति फिलहाल फायदा ही या नुकसानदा ऊंचिन अगर आते एजुकेशन पर्पज ही गलता ना तो आते स्क्रीन टाइम पर लिमिट जा पर सर है जैसे कि मान लो ख्यार एक पो कोशिश बचा प्रसुनी शौक भी कसिल जा सबसे जरूरी इन शौक भी कसिल जा छुच्चा शौक भी कहें गई का मछुत पा देखा चाहे इंतिस वीडियो रेफर बचा जुआ देखा ची किस पूरा लेक्चर कंटिन्यू तांची निरांग मो तो दस का लाइब्रेरी उनसे फितो चार सुपे दो के एक तो लो विजन तक छांसों दूसरा एयरफोन तक पिका कोई हेयरिंग इंपॉर्मेंट ना सचिन जुआ अब दो चांग फायदा में देना नौकरी थोप से नाव छोते मीक पो छोते स्केट पो छोते फिजिकल एक्टिविटीज जैसा यमो स्क्रीन टाइम कम बचा सबसे जरूरी स्क्रीन टाइम कम बचा दोनों यन में सब इंतिस बुगी का सिलचा यरता इंती एजुकेटर हों चीन चाम से फैकल्टी होना स्कूली का खोन जर चीन स्क्रीन टाइम कम बसे यन में सब शौक भी का सिलचा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन बो शौक भी का सिल हाँ दे फैसिलिटीज हों चीन गाँव साफ़ी लकिंग आता घर आता वेल एजुकेटेड आता प्रोफेसर में टीचर में फैकल्टी में खोन फिला मजबूरी का सोचिन सर लेकिन जरूरी इनकी यमो फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा अलग मी एक्सरसाइज हूँ जिन मी एक्सरसाइज हूँ यमु सिलसिला बचा दोनों स्क्रीन टाइम सबसे जरूरी स्क्रीन टाइम कम जाचा जो है बस बाकी आई ड्रॉप लेंचा स्क्रीन टाइम कम जाचा बिलिक के दन नमो मी सक नमो जोम से दुखचा आइसोलेट मी सा चुजा रंग आइसोलेट छाना का तो यमु स्नेह आयोस मी आयोस अब मेंटल या शिकार से जो है मेंटल इलनेस भी चांसेस इससे तब शुरू बिल्कुल खोरंग सा अकेला कमरा चाहे दुख से छन निमासिल बना अब नुकसान बची हूँ जिन्हें तब देगा मासूम सर अपन लास्ट पे रिजल्ट आयो चाहे जो क्योंकि स्नेह का सर मासूर मीक पे तुम बात दिमाग पर कमजोर सो अब हेल्थ न्यूट्रिशन गंगमा बैलेंस डाइट जैसे मैंने सर बैलेंस डाइट एंड बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस मी नौकरी बखाना इन सा इन स्क्रीन टाइम में सबसे जरूरी देना डॉक्टर नजर नजर छीन स्क्रीन टाइम कम हो जाए सर क्योंकि यहाँ फायदा मित मना नक्सा थत्ता चिक डिप्रेशन आ कमरा चे दुख से सिले ना दुख चीन अब दे वजह से लास्ट रिजल्ट आमो से पहले फिर बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब दक्षा आती करके ला मेन मांगो केस एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जाशियत फिर भी गवर्नमेंट इज खुरी तरफ से काफी बेनिफिट सर है दक्षा या पोस्ट वोस्ट अभी जोमित बिंग से दे रहा था जितना एडवर्टाइज चेन पोस्ट वोस्ट तक दे सब इंता बाजार ला अगर सुंग डिप्रेशन उतना हाइपर टेंशन खाची का गुआ जर्मो सवा मांगो सिले या स्क्रीन का दुख से दुख से दोन लंग ती बाजार लायंग डॉक्टर हेल्थ मेंटल हेल्थ जिनची सर उद्या काउंसिलिंग लेन मेन देगा सिल सना डिप्रेशन चेत सिल सना गो सिल दोन गाँव मा खूर तुमो बस आता काउंसिलिंग दाचिन अगर मा काउंसिलिंग रुकोस नगा तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लाओ से अगर इनता एस एस सी डिवाइस क्वेश्चन चीर क्वेश्चन नगा तो रुजू बने डिक सर मेन पो गति चाम से एजुकेटेड यूथ यूथ गाँव इस तैयारी पे न्यूत और मल्ला देना इनकी स्क्रीन टाइम कम बचा आइसोलेट मांगो मिदुक चा और दोमो बस फ्रो डिस्कस बस से छू छू से कंसेप्ट क्लियर बस सिल चा सर सबसे मेन पो देना जो है स्क्रीन टाइम कम बचा जो है
1: बख्शीश सलीम जावेद साहब व तुस पुस गता खाशे जाता मैं नुक्स परवन गता मन मोमो यरे जरी रंथोशन वक्स कुने नोना वक्स पी से आकाशवाणी करगिल ग्रेली का स्क्योते यरे रंथोशन ना मोतिक तो समझोन गा मा मिमास कुन सखपा फ्लिप चूस पी यरान ला उजु छरीमो अस्सलाम वालेकुम
0: या वालेकुम सलाम
1: त्रिसो यंता सखपा ले त्रिसो तंखान पुइन मेन सलीम जावेद सोशल वर्कर दे त्रिसो नियंबो दिरिंग से सगेत प्रोग्राम पु थमाथोन दियो नियंबो गचान ला इजाजत शाज दे बाजत यजु खुदा नर सहमोन फकरानु वस्सलामु अलैकुम।
2: दिरिंग से सगेत पानी फिया प्रोग्राम यानि नुपिन मीडिया मोयुक दोन एफएम के दियो आकाशवाणी करगिलिन वस्पतु सो दुर्दुन सोंसु कसता पुरगी फीचर रियम सोसुरु प्रोजेक्ट नियन मसत

0: छोटे मोटे नदी नालों को अपने साथ मिलाते हुए आगे बढ़ता है।
1: सूरी गंगलुंग चमयतंग खिलेन थुरबुगन्यांग रुगेन राराव निका राउबेन जबल सुबसन्यांग लेबना गुंबेन देव देव स्कूलेन बुलेत होम्बुना लिंगलिंग मालसाउनिका लेबना चुपचते खरीद माबा डुलेन करगिलो लेबत
2: सुरुना करगुलो छप्पा एफरकाना देफरका म्यूनिस रंगरंगी युलयुल्ला युरवाफिंसे छुफिंसे रंगसुसे सख्यातना चंगमलक सुस आबाद बेन्यो सुसदिरगम छे कनारन ठक्सत्रुलिन फनखेलेने सुसन्याफिंगेन फनखेलेने
0: हमवार जगहों पर खामोशी और उतराइयों में शोर करते हुए करगिल पहुंचता है और इस दरिया के दोनों किनारों पर सुरु से करगिल तक लोगों ने जगह जगह नहरें खोदकर जमीन को आबाद किया है और काश्तकारी के काबिल बनाया है। पेड़ पौधे उगाते हैं और माहौल को खूबसूरत बनाते हैं।
1: जिरग्याम छे छु लेखमयत थुंगमांग यानेत बल्कि छिमुनिस जरबा नजोम से दिरग्याम छे छु जुखा यांगमो इंजरेत दिरग्याम छे छु का जंस कोलेत रगोना गोस लागुन खुसे लेखमोबेत म्यूनिस रगोशासी लस गंगमा दिछु कोलेत जरबी तंगो दुइन कि दिरग्याम छे छु का म्यून द्रंग से ngom से थरथर सों से ननमेत सनमेत सों से जिनजिन दुख से रंग सुसे खाकुरुन सकते नहीं।
2: गा आमाचीज खुरी सिंगी खाक इनमी, फून वफनार्स चेसिका, स्वाचोखला खुरील जोंस निस्के का, सुरुना करगिल सफ़ा सुसे योत पी युलकुनी मिंग तक्सुन जरना दुतोगा इन।
0: ये दरिया अपने किनारों पर बसने वाले लोगों के लिए एक माँ की मानंद है, जो अपने बच्चों को खिला पिला कर परवरिश करती है, नहलाती है और बड़ी वफादारी से इनकी सेहत का ख्याल रखती है। और सुरु से लेकर करगिल तक दोनों किनारों पर खास खास बस्तियों का नाम इस तरह से है।
1: परकाचिक दियुलपो दिर्गम से जोंस निस्के का सुखसेयत दियुली गंगरियुनियंग ना दिर्गम सो गोजुक छात परकाचिक ना बापसे यों से दिर्गम सो टंगोल ला लेबात देकना बापसे यों से अचंबुर कोचिक गाले पानीखर ला लेबात
2: पानीखर गाल बना पानीखरी योनी लुम्याना भ्यूंखानी गम छो चिलिंग जरखानी छुनसर गम छो द्यां द्रेसबात सुरूर गम छ्यां द्रेसखानी गोमार गम छो चिलिंगी।
0: दरियाए सुरू के मंबा के साथ पहली बस्ती परकाचिक है। परकाचिक से पानीखर तक दरिया के दोनों किनारों पर टंगोल कोचक अचंबोर और चस्कोर आबाद हैं और पानीखर में दरियाए चिलिंग आकर इस दरिया के साथ मिलता है।
1: दिर्यम सोंग इसके छुद्रे से का तेसुरुना पानीखर प्रांती जरखाने युलकुन सुखसेयत तेसुरूर गलबाना दिर्यम सो करगिया लेबत योनी फरके का करगी टंगी फरके का नमसुरु खाओ सुखसेयत
2: करगी ना खिचुरी बार प्यानुक शंग

0: करगी और खिचूर के बीच शंशी नदी इस दरिया में आकर जम होती है।
1: देखना युलजुक दमसना थंगबू रिगलिंग रिगल बना संग्राना थुत भी जम्बे गुत जिस जम्बाओ रिगम सो सूरी का नी सिरे सी छोगो जम्बाओ दूर चक जम युत संग्रा रिगल बना दीर्गम सोए का संकुना संग्रा थुत भी चक जम पो सुमिरे सी छोगो जम्बाओ दूला फरगुन संसी जम्बा जरेत फरगुन संसी जम्बे योगा दीर्गम सो जबुल सुब सुनियं रिगल इंचाद
2: Sangpar gyamtso suri ka zambangis yod. Dona sangka dir gyamtsyang grokpo ngis drespat. Tangaljong silung meana yongkani grokpo la khandi grokpo zaret. Yonjong silung meana yongkani grokpo la nakpuchu zaret. Di grokpo stakpa umbi ryunyang na bingma.
0: Yahan se aage sangku tak dono kinarum par yoljok, damsana, thangpo, gyaling, changra vagaira abad hai. सांकू में एक नदी दाईं तरफ वाली नाले से आकर इस दरिया में मिलती है जिसे खंडी ग्रोकपो कहा जाता है और दूसरी नदी बाईं तरफ वाली नाले से आकर इस दरिया से मिलती है इसे नकपूचू कहा जाता है।
1: सांकू आदिर ग्यामसोय का जंबांग इस हुकूमत इस चोसेयोत चिकपो कारगिले सक पसंग रिंगमो जम्बाविन दिजम्बे रिंगपो मीटर निपया थल थल रिगत दिजम्बास शहर संकुना थसगाम थुतियत ए जम्बा चिकपोस नरम बिना ब्राको थुतियत संकुर गालबाना लंकर से खाचन फरुना दोना टंग जोंसपुला थुइना सुक्सियत
2: फरुना जरखनी युलपोर गालबाना रग्यामसो सुरु दोगमो मालसाउनियाना बिनसे फलफल युलुनियां लेबेत टंगल जोंस पोला टंबिसना कनोर सुक्सेयोत यन जोंस पोला थलेस्कोट गोन दोना लुंचे जरखनी चोगो फलफल युलकुन सुक्सेयोत
0: सांकू से फरोना तक दरियाई सूरू के दोनों किनारों पर थसगाम ब्राकू लंकरचे थुइना खाचन और फरुना आबाद है। फरुना से गुजरने के बाद ये दरिया खुली और हमवार बस्तियों में पहुंचकर कुछ ज्यादा ही फायदेमंद हो जाता है। इन बस्तियों का नाम दाईं तरफ टिम्बिस जहां पुराने जमाने में राजा महाराजा महल खानों में रहा करते थे टिम्बस के बाद कनूर गांव आबाद है। बाईं तरफ सिल्सकूट गुंड और ट्रस्पून आबाद है।
1: लोनचेर गलबना दीर्घम से छी का टंगजोंसपुला सर से युनजोंसपुला अशना सुक्सियत देखना योंग से टंग जोंसपुला चेचे थंग यून जोंसपुला ग्राम थंग देखना योंग से टंग जोंसपुला स्तिक से यून जोंसपुला मिंजी देखना योंग से टंग जोंसपुला छुतुक यून जोंसपुला मिंजी गोन सुक्से
2: मिंजी गोन गल बना का कुशीली से सफा यून जोंसपुला रिंग मुस्पांग तीती चुमिक बरुचोक ब्यामा थंग दोना चंचिक दोन सुक्से योर टंग जोंसपुला अंदो पुएन दोना शिलिक से सुक्से योर
0: ट्रस्पून से सिलिकचे तक इस दरिया के दोनों किनारों पर ग्रमथंग चेचेथंग मिंजी स्टिकचे गुंड छुतुक टीटी छुमेक बुरुछोक अंदू बुरु शगरन पोईन चांचक और काकू सिलिकचे आबाद हैं।
1: गमसो सूरी फनखेवना रिंस्टिसुन दिचोगाइन चिगिरेसी दीर्घमसे छु नतेस जिंग ओल दोना चांगमालक सुख सुनी बागुन लतंग से दो निकना नतेस रगोस्पी फसिल जनफे खजस दोन चोक सुन लेने देस्त्रोलिका नतंगा अशिपी न्यामत कुन थोड़ो

0: Nisire si dir gyam tsui chui ka ngates ngatir gona goslak kun khruse yakmo base jagar trimana ejara sim kuni shidina ngatir gon strumuse nanmet chanmet jagar domen ma ngates zaja si chis kunang khruse nishnot chabase snot kun khruse zet
1: is darya ke bahut sare fawaid hain awal ye ki iske pani se log apne kheton mein fasal ugate hain अपने पेड़ पौधों से मेवाजात हासिल करते हैं कपड़े धोते हैं दूसरा ये कि हम इसके पानी से नहाते हैं बर्तन साफ करते हैं और इस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखते हैं
2: सुमेरे सील तन चुखन अशिपस दीर्घम स्वयं दन चुस्पी दिन्याउन नतांगा रिजगी जोस्ते का जा फनेत कि दोनों नुक नतां गोस्पी protein na vitamin kun momo yong cha in su
0: gi re si ngati ston thok ko yi ngati sakhet kunikana byung mi nas kro bro ragyam bras cha che che dona molak dunya nu mahkama agriculture tahqiqati kana tahfa base esho go yul kuni kro bras basang protein na vitamin khimo yote in su
1: तीसरा ये कि यहाँ के मुख्तलिफ किस्म की फसलें जैसे बारले त्रम्बा छा छेछे वगैरह महकमा एग्रीकल्चर की तहकीक के मुताबिक दूसरे इलाकों के फसल मसलन चावल और गेहूँ के मुकाबले में विटामिन और प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं

0: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल मिनी हाइडल प्रोजेक्ट गुलाम अहमद मीर जिले में पावर पोल्यूशन इस तरह बयान करते हैं।
1: मगा दक्षिण सुपर सर्वे छकनो न्यानो छो प्रोजेक्ट नाती मन मामो कतो ए दिना शुरू गम से का सर्वे बचे ता फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या या या वजह का लुसो जुया न्यानो नगा जरा इन ना चिक चिक सी स्कोर ला मन नजर जस पर जरूरी समय चे बन मौका दो न्यानो न मन लो खाची न फला ता सुरु न्यो जुदे सुरु

0: प्रिंसिपल पीएमशीरी स्कूल जवाहर नवोदया विद्यालय खुम्बतंग कारगिल के मौसला इलाके के मुताबिक पांचवी जमात में पढ़ रहे तालिबे इल्म जिनकी तारीख पैदाइश 1 मई 2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच तक हो उनके लिए छठी जमात में दाखिला लेने के लिए जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वालिदैन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए navodaya.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल पीएमशीरी स्कूल जेएनवी खुम्बतंग कारगिल के ऑफिस से राबिता कायम करें।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: Rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmo darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chiki ka advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनेनुह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।
5: मीडिया में भी दोनों एफ एम के दिवा आकाशवाणी करगिलिन वक्स पर तुस्त उर्दू ने मेडिंग शिनशनु कसत आकाशवाणी श्रीनगर कन उर्दू खबरों ना तबसरा रिले बेत रिले ला डांग बासत।

0: मुगल मिलन भी कहा जाता है से खिताब करते हुए किया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक की इत्तला मिलने के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया और इनमें से 13 मुलजिम इस वक्त जेल में हैं। पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास से के ताल्लुक से वज़ीर आज़म ने कहा कि एनडीए बिलों की मंजूरी को यकीनी बनाने में एक मुस्बत रोल अदा करेगी। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलों को लेकर हिजब इख्तलाफ के शोरगुल के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई जब पहले अल्तवा के बाद दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने शोरगुल के बीच पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के लिए इंतखाबात से मुतल्लिक करारदादें पेश की, लेकिन हिजब इख्तलाफ ने शोरगुल को जारी रखा और नारेबाजी की, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने को मिले। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने हिजब इख्तलाफ के अराकीन से अपील की कि वह ऐवान की कार्रवाई चलने दें, ताहम अपोजिशन ने अपना रवैया जारी रखा और कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ताहम बाद में पार्लियामेंट की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कामयाब तकमील को मनशियात के खिलाफ एक अहम संगी मील करार देते हुए कहा कि इस बिद्दत का कला कमा करने के लिए मिशन जारी रहेगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मनशियात से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वह आज SKICC श्रीनगर में ड्रग फ्री जेंट के कैंपेन के 100 दिन मुकम्मल होने के सिलसिले में मुनक्कद तकरीब से खिताब कर रहे थे। पेश है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे की यह रिपोर्ट।
1: महकमा इतलात के एहतमाम से मुनक्कदा इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि 100 रोजा इस मुहिम के इख्तिताम का मतलब हरगिज ये नहीं कि नशाखोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, बल्कि मुनशियात का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ यह हमारी लड़ाई का एक अहम संगे मील है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 100 रोजा इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करने वाले सभी सरकारी, सिविल व पुलिस अफसरान, तालीमी इदारों के सरबराहान, मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी अरकान और नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस आजम का इजहार किया कि अगर हम इसी लगन और जज्बे के साथ काम करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक बनाने का हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा।
2: 1431 किलो ग्राम नारकोटिक ड्रग सीज की गई है, इसमें 23.29 केवल हीरोइन है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज 46,577, डिटेंशन अंडर पिट एंड डीपीएस 127, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड 331, प्रॉपर्टी अटैच्ड 188.89 करोड़, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज डिमालिश 92, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 28.40 करोड़, हॉट स्पॉट फोकस अवेयरनेस इसमें फिगर है 4474, लेकिन अवेयरनेस के लाखों प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में शासन की ओर से, विभिन्न विभागों की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से लोगों ने किए।
1: मनोज सिन्हा ने 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी अफसरान, महलकारों और दीगर लोगों की इज्जत अफजाई भी की। इस मौके पर महकमे इतलात की जानिब से नशाखोरी से मुतल्लिक तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री के अलावा महकमे समाजी बहबूद और इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर चैप्टर के जरिए तैयार करदा वीडियो मॉड्यूल भी पेश किए गए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए मैं शेख तजम्मुल।
0: इस तकरीब पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ दरक्षा अंद्राबी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दरियासा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कुलगाम में 5,78,00,000 रूपये मालियत की जायदाद को अटैच किया गया। 363 मुतासरीन को इलाज मुआवजा फराहम किया गया। नीज 1,143 किलोग्राम नशीली अशिया तबाह की गई। बड़गाम जिले में इसी तरह के अभियान के तहत 87 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार किए गए और 1.5 करोड़ रूपये मालियत की जायदाद अटैच की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रजौरी और पुंछ अजला के जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ बात की और वहां हालिया बारिशों, सैलाब और पसियां गिराने की वजह से रिहायशी मकानात और अवामी जायदाद को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और आईजीपी जम्मू जमीनी सतह पर मौजूद हैं। एलजी ने कहा कि उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके बचाव, रिलीफ और बाजावादकारी इकदाम को तकवीयत बख्शें। एलजी ने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि तबाहशुदा 435 में से 365 सड़कों को बहाल किया गया है। एलजी शहरियों से अपील की है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर

0: सख्ती से अमल करें। वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ जिले के नंदी कोल लोरान इलाके में दुमेल ढोक के मकाम पर एक पस्सी गिराने की वजह से सात कीमती जानों के जियां पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए मुतासरा कुंभों के साथ यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर-आला ने आज जान हुए अफराद के लवाखीन के लिए फीकस 6 लाख रूपये एक्सग्रेशियर रिलीफ का ऐलान किया। इस रकम में से 4 लाख रूपये SDRF जबकि 2 लाख रूपये वज़ीर-आला की रिलीफ फंड में से वागुजार किए जाएंगे। वज़ीर-आला ने काबीनी वुज़रा जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा को हिदायत दी है कि वो रजौरी और पुंछ अजला में मुतासर इलाकों का दौरा करें। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बजात में मतला आज अबरालूद रहा और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिशें होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। इन बारिशों से लोगों को गर्मी की शिद्दत से कदर राहत नसीब हुई, ताहम बारिशों की वजह से गली कूचों और सड़कों के जेर आब आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अवामी हल्कों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि निकासी आब को यकीनी बनाने के लिए इख्तराई और सूदमंद इकदाम किए जाने चाहिए। उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के तनाजुर श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: ऑलरेडी जैसे इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट एडवाइजरी ऑलरेडी इशू किया है कि 23rd फोरनून तक ये एक्टिविटी जो है रहने के चांसेस हैं, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी से लेकर वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, बिल्कुल हैवी इंटेंस शावर शॉर्ट पीरियड में, और उसके साथ साथ यहाँ वैली के अंदर भी तेज बारिशें अभी नॉर्थ पार्ट सेंट्रल पार्ट और साउथ कश्मीर के कुछ जो अपर कैचमेंट हैं यहाँ पे तेज बारिशें हो रही है। तो ये एक्टिविटी थोड़ा सा रहेगा, इवनिंग से थोड़ा कम होने के चांसेस हैं, और कमिंग डेज में भी खासकर कल भी जो है सिमिलर एक्टिविटी वेदर एक्टिविटी के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है, कुछ एक जगहों पे जो है टिमली या हैवी से लेकर वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। तो इसमें फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड मडस्लाइड शूटिंग स्टोन्स रॉक फॉल ऐसे चांसेस बहुत है, क्योंकि मुसलसल पिछले 3-4 दिन से बारिशें वक्फे हो रहे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो 24th ऑनवर्ड मौसम में ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखी जाएगी।
0: मौसम से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज भी मुअत्तल रखा गया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज भी किसी भी यात्री को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत नहीं दी गई। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश की पेशगोई की है। इसी दौरान हुकूमत ने नासाजगार मौसमी सूरतहाल के पेश नजर कश्मीर सूबे के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा गैर सरकारी स्कूलों और जम्मू सूबे के विंटर जोन्स में आने वाले तालीमी इदारों में गर्माई तातीलात 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं, और ये तालीमी इदारे अब 27 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि इंतजामिया उभरती हुई मौसमी सूरतहाल के तनाजुर में लोगों की राहत रसानी के लिए तैयार है। कुलगाम में एक तकरीब के हाशिए पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और लोग जरूरत पड़ने पर इनसे राबता कायम कर सकते हैं।
2: कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी टीम्स को एक्टिव किया है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिव किए गए हैं, लोगों तक हेल्पलाइन नंबर्स पहुंचाए जा रहे हैं, वेदर एडवाइजरीज भी सर्कुलेट की जा रही हैं, जैसे आज और कल के लिए साउथ कश्मीर के लिए खास एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके लिए लोगों को भी इतला किया गया है कि वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की और उसके आसपास नालों किससे थोड़ा सा दूर रहे, उसमें वेंचर आउट ना करें। इसके अलावा जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पावर है, हमारे वाटर सप्लाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी की टीम्स भी हाई अलर्ट मोड पर है। ओवरऑल कोशिश यही है कि जिस तरीके से इवॉल्विंग वेदर सिनेरियो है उसके हिसाब से भी अब रिस्पॉन्ड करें, और जो कंट्रोल रूम्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ये वेट वेदर स्पेल है उसको हम बेहतर तरीके से निकालें।
0: इससे पहले सूबाई कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के हमरा ककरन कुलगाम में तारीखी माता कटियायानी मंदिर पर हाजिरी दी। वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करना चाहिए। दिल्ली से लौटने के बाद आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने का यकीन दिलाया है और इससे ये वादा जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो स्टेट की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी के लिए 50 MBBS सीटों की मंजूरी दी है और अब इस कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी 150 तक पहुंच गई है। ये जानकारी सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना एत्तू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-आला की क्यादत

करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य

0: सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू

0: को किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि बीएचईएल ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। बीएचईएल द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। बीएचईएल भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाजें। सामीन, शब के 8:15 होने हो चुके हैं। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

ये वो है जो आए तो गुलशन में कारोबार चले, शुरू बहार की हवा चले और फूल खिलाए, या अन्य गुलशन का कारोबार महज उसी की वजह से बंद पड़ा है जिसका उन्हें इंतजार है। गुलू में रंग भरे बाद नूर बहार चले, गुलू में रंग भरे बाद नूर बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।

बरता नहीं है जी सो बार देखकर, बरता नहीं है जी सो बार देखकर, बढ़ती है और हसरतें दीदार देखकर।

दोस्तों, दिल तो नहीं चाहता है कि आपसे विदा लें, मगर क्या करें, वक्त साथ नहीं दे रहा है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन फयाज को इजाजत दीजिए।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा

0: की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही

0: बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
2: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए, आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म, कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
3: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार

0: उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया। वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है।

0: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister Dr. Jitendra Singh informed that the government accepted the demand of holding discussion over the matter. However, the Union Minister said that when the government's stand was conveyed to the Congress leader, Mr. Gandhi backtracked from his earlier stance and added more demands.
2: Then I told him, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. It's very unfortunate. The leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this, particularly so when this morning itself Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसान सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हिराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलात पर नारेबाजी कर रही थीं। रखनांदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके

0: साथ प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही हैं। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़ियाफ़त और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्दाना डॉवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थीं।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा खत्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफर करेंगी। मध्य प्रदेश असेंबली ने आज

0: भारतीय सरकार ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकी ने पार्लियामेंट ने अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यकसा सिविल कोड यूसीसी के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में एनएचपीसी हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेरे तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर आजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकायक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंभों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान एनडीआरएफ की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुर्मुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुर्मुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाज़े पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज एमवी गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें ज़ाय हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 15 से

0: 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में होने वाले एफआईएच आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: درس پنتس اکاشونی دہلی کنا خبرن لنگین نت بن میڈیا مے دون ایف ایم کے دیو اکاشونی کرگلن واس بتو سدرگون میٹ سم چھ سنس کستا شینا پروگرام پنر پروجیکٹ نین مزت پروگرام پروجیکٹ پن زاکر حسین

आकाशवाणी रेडियो करगिले सिटेडियो यो शिना प्रोग्राम पुनर्गिनी मोछोर छोमु चोहानस प्रोग्राम कोंड्यात चुने बड़े सजारे जारी बटर मुसु जुगा सलाम थे बुजमोस दखन सजारे जारी भी किसो कौन हाथ तो कनी यदिश के जहां तो छो बे बयात तुने खुशहाल वो बयात सजारे जारी भी अनु शिना प्रोग्राम अश अनि चिरी जहन की अश बेसु मुश्काल थे बोन अवलु को बेसु मुश्काल थे बोन सी हाथ गा रेसी मकामी बरादरी जे कचाक असरात एक बेनी तो बेसु बरा मजा नातिक या कसीदा गा कौन दिया तो गोड़क फायरी

배우가 온 불로 또 아이 한옥 가 간다기 티에스 왁사 베이스 우노나스 키 카리 이레 키 간다기 타토 아제 길레 셰레 까나 부슈시 사자르 자르 위안 쿠드라티오 엑 니자메 칸 사이스 게라 지부 제잉 간우가 와유레 간우가 이레 아가 간다 티에 또 카리 से अजड़ा गिले शेर डाक शुशी बोजों ससे वो जो है सो वो जो है देजो देस अपो बेम बोजों तो सजार रारु बेन सुटा केस की इस्लामिक गा वो गंदा थ्यो की वयू लो जा ई लो जा छिल दो योनी गंदगी थ्यो की कोते फतवा गा वा तो आगा इस स्थानीय तरफ शो की गंदगी थ्यो के हराम है थे रजीहन ला इश्काल है थे रजीहन चोन से टके तो छत तो सजार रारुवी अनिशिया तो इम्पेक्ट असनी सोसाइटी लाई हन तो सजार हजार भी अवल गए रजी गे इसकी अनिशो लाओ फायदे तो गहा लावे नुकसान ही तो गहा अनिशो अनि सियाहतु जब वही बोझा सजार हजार भी मीशो टक्यू वाले तो दरी ने बाल मुलाए चूने बड़े लाओ वजी बोझा टूरिस्ट बोईता असने कुई और फिरी बोझा असने लया कोई बोई बोझा असोश नला एक बोई बेया असने गोर रोए बेया हॉस्टलोए बेया हॉस्टलोए बेया अच्छे गेस्ट हाउस है बे असने जाको सिनला मुलाए बालो सिनला इंट्रेक्शन बोई मुलाकात बोई बोजें तो असने गा अनि ना वाले ना सुले जैसे सो इम्पेक्ट लाई बोई बोजें के चों तो रेसे गा रेने नहीं हिसाब पिजा रेने रेसे थे इन क्रोमी रेसे गा थे बोजा तो टूरिस्टी बुड़े गा सही टूरिस्टी ने वजी बोजें सेसे गा खाचे तोक अबश तोक या बढ़िया जाक तोक या से जाक तोक बुड़े नला मिशरक बो वजी बोजा असोई ते खबर ने वही बोझे कि कानू खाचो बिल कानू सो बिल कानू अवाशन सो असोई ते खबर ले ने वही बोझे तो सजार हजार हुई बेसु ट्रकेस तो अनिश्चित जगह बेसु सोसाइटी जसनो समाज हुशार लाओ थेक बेन ओजों खुसूसन नौजवान सबक रजेन बाल मुलाए उसी नला इंट्रेक्शन वही बोझा रे तो ने चेक चेक सेगा वही बोझा से क्रोमी गसी चरी बोझा लेकिन मैक्सिमम जो है खाचे गा वही बोझा खाचे क्रोमी गए के जो दूसरे जैसे डाक मुंतकिल वही बोझे तो ने असनो समाज जा अनि जो है गंदगी जो है फैलाई वही बोझे दरिनो माहौल वजी बोझाऊ तो सजार हजार हुई बेसु टक्कियों वाले तो बेसु टक्कियों वाले तो आज मुशोर असने दा दो मालो जमानिश रजी बोझा कि एको अगर बटवा गया रुपए तो गया सामान एक अगर दिशे के फल तहसीली तो से गिनी था अजा जे के फ्यार थे छोरे न ले मोस मोस का सो मालिक ऐश तो सा रुपए या से चीज या से सामान आई दिशी जे फ्यार थे सची बोझली कोई सा हाथ ने दे बोझले तो बेसु टकी होगा दरी नहीं असो जे कचाक इम्पेक्ट बो ये नहीं अश से हाल सा ला दे सामान तो सो पेरे छोरिया चंदो जो कलहरी गोर जो कलहरी बोनी हनी बेहोई तो अनु इफेक्ट गा असनी समाज जा दरनियो बोगा एहूं तो दरी ने जो गए दरी ने गबूर सही है नुश तो बेई गसनी का माहौल जा अचाक दरिनो दरुम बे अचाक एक्सपोजर ने लजे हंस जा खान असनो एलिया बे दूर दूरदास फार फ्लंग एरियो जाक तो सजार हजार हुई अनिसो इम्पेक्ट अनिसो असर असनो समाज जा जरूर दिची बोझे तो अनिसी कार्यो का लाई ख्याल छोक आवाजाऊ तो ने अनिस जो अलावा गा जो खन थो तो माहौल लाई जरूरत हन कि माहौल साफ सफाई छोरियो की गोश साफ सफाई छोरियो ना हो जाऊं महल्ला साफ सफाई छोरियो का हो जाऊं कनिक दरी ने वाते सिया हो रहे रजो ना हो जाऊं कि छो से अनी अनी अनी चीज इस्तेमाल थे वो जा ताकि असो माहौल जो है असी अनु समाज यहाँ माहौल जो है गंदा ने वो बोझे ताकि असुर का नुकसान ने वो बोझे कुदरत उस नला छेड़छाड़ ने छो का वजी अकिनी लोकल बाई लोकल टिकी लोकल सब्जी इस्तेमाल छो का वजी रेनो रगा जो का वजी रेनो रगा केमिकल हाई दरी ने जो का अलाई बलाई चीज है रेस नोर का इस्तेमाल नहीं थियो जो कावजी बेसु का नहीं थियो कावजी तो सजार हजार भी से अलावा का एक चीज एक सियाह लाओ बोन तो आ मनफी असर एक अनी हन कि ट्रैफिक लाए वो बोझे गाड़िया लाए वो बोझे गाड़िया लाए वो मन तो कार्बन डाइऑक्साइड धूम खजी वो जाऊं सी वजह की गा असनो अनु इलाके जा एक हसास हूं इलाके जा माहौल अच्छा कौन वो बोझ तो ने सजार हजार भी से अलावा का मनफी असरात तो लाए तो खाई कि बेसु मनफी स्वरूप कली हुई है तो से लाए असोई थे आवश्यक बोई बोझी तो बेसु एक पॉजिटिव एक असरात तो गा अनु सियाहतो असोई थे लजी बोनस के थे तो सियाहत जो है असोई थे एक जरूरी चीज एक गहन कि के थे तो असनी मायशत बढ़ाई बोई बोझ दरिने जक वजी बोझा असने गाड़ी अजीब हो जाई असने होटली अजीब हो जा असने गेस्ट हाउस ही अजीब हो जा बालो रे मुलाजिमल अजीब हो जा बाल मुलायरे तो ने ओई बड़ा टकियों गले तो बेंसू